बॉर्डर जमीन पे इधर कोने पे डीजे नशे में पड़े दुख किसी के यहाँ पे बंजे बचीजे सबके फोनों पे कॉलों पे कॉले लौटे नहीं सोले नोटों की गड्डी वो उड़ा दे वो जो गए नहीं कॉलेज जमाना रन दिस ईयर वन लेस फियर आई एम लेट दे गो रन दिस शिट 100 इयर्स लेटर आई फील इट समथिंग्स नियर पेन शार्पर देन अ मदरफकिंग हंटिंग स्पीयर क्या यही है पावर आई एम गोना डू दिस फॉर आवर्स एमसीज करे रेंज